अच्छा वाई के ना छे राज भाई पो सिफात के अच्छा ब्लीच उस्ताद आए हाय सिफात के वेले नस्ता ब्लीच सिफात के बतूस तो ठोल प्रोडक्ट मिला विजी शाह बिल्कुल सिफात के ब्लीच छे दाए कना ब्लीच क्रीम छे दे अगाम मौजूद दे सिफात के बतूस से ता दुआ के समझी क्रीम ब्लीच छे दे अगाम मिला विजी सिफात राइस क्रीम ब्लीच और दे सरा सिफात 24K गोल्ड ब्लीच जी

हाँ जी दोस्तों हाजिर शो मजीनर कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान पर शो के स्पॉन्सर की ये स्पॉन्सर शो विधाम बल्कि हफ्ते की सलू रजे यानी दूरस्थ तरीके बुझे पूरे प्रोग्राम की और मूंग खबर है तरह ठोकी ठकारे लतीफी संदर

खा सही रहती तखा अरसिमी अनु बना ना ऐसे मोनी स्कूल प्रेस दे चिल्ला जैसे गई तो वका नसियात हुई तो वका।

एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

और 300 रुपए में फिर आप जब इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम लेंगे या इश्मा ब्यूटी क्रीम लेंगे तो ये आजकल वाली क्रीम है नहीं। इश्मा ब्यूटी क्रीम 2018 में मैंने लॉन्च किया है और इश्मा फार्मूला क्रीम 2019 में मैंने लॉन्च किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड के साथ मैंने इसको चेंज नहीं किया कि भाई ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड, इसका नाम चेंज कर दो। पूरा नहीं कर सकते हम मार्केट के लिए और दोनों पे 300 रुपए कीमत है। तो 3-4 दिन जब आप लोग रात को चेहरे पे लेप करेंगे या दिन को भी लेप कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है 3-4 घंटे के चेहरे पे आप लेप करके छोड़ दें तो 3-4 दफा के इस्तेमाल से आपके चेहरे से दाग धब्बे चाइयां कील महासे जाने लगेंगे, चेहरा आपका खूबसूरत प्यारा लगेगा, लोग पूछेंगे आपसे कि भाई आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो या बहन क्या इस्तेमाल कर रही हो। तो इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी बल्कि आपकी खूबसूरती, आपका चेहरा वो गवाही देगा कि भाई ये कोई चीज इस्तेमाल कर रही है या कर रहा है। फरमानुल्लाह द बाजवड़ना वही चिक्राम भाई था तमें सलाम दे सिंग सेवा जद बाजवड़ना फरमानुल्लाह करा करी वाला यमा जमा स्टोर दे करा करी एंड जन स्टोर चौतरे बाजार प्रोग्राम दे होमा और जमुंग सरा द चौतरे बाजार के द फरमानुल्लाह करा करी वाला सरा द इश्मा टोल प्रोडक्ट मिलावी की पोईश हुई ना आओ बस पोईश हो खलक। हाँ सलाम अलैकुम इकराम भाई सिंह है तनहा फ्रीदैया मा फोन पुली कमरा गले बचुड़िया लो या खजश मामू आवाज दे बिल्कुल क्लियर दे सवाल का वकन अखंड कला इनाम यमा दीर बाला नो तकम जवाब रखे नो तो रजम वे नारे शाह हुसैन यम जमा दुकान एड्रेस दे चिराग दिन कले शाह हुसैन जरे पीको एंड इश्मा कॉस्मेटिक सेंटर। अच्छा होजरी एंड पीको एंड इश्मा कॉस्मेटिक सेंटर दातवाई के ना ज सोमैया यमा द करक नानो जस होकम सोमैया चित द करक नहीं हाँ जम द पी खबर नहीं हम खान मायरा खटकी अमा इकराम भाई सिंह गए शुक्र देखा माँ इश्मा हर्बल स्प्रे आओ इश्मा हर्बल आयल वडेर खेस्ते रिजल्ट है इश्मा हर्बल स्प्रे लुई कमाल दा दे के ना अल्लाह दीने की कमजी बाने जख्म रालो स्पून रालो खारख रालो उरुबो सर कमजे उस इश्मा हर्बल स्प्रे पे फोरन बदरता आराम मिलाओ जमा फर्स्ट एस एम एस दे जस्ता सुखोर यमा सलाम दर तकोम वालेकुम सलाम खोर हर कल राशि वहीद अकबर यमा द मरदान ना पखेर वहीद से जमा विख्त ग्रोथ न कई सवर लड़ोड़ मा इस्ता सो आयल इस्तेमालो मा आयजा खान द तगबैना इश्मा हर्बल आयल सर मालिश का और इश्मा ओनियन शैम्पू या इश्मा आमला शैम्पू जदवाणों के हरियो मिलावी के इस्तेमाल हुआ इनशाला ग्रोथ बकई द जनानो विख्त ग्रोथ हम कई जनानो विख्त ब्याम रखी लग खुआरी खुआरी खा दिन की जनानों के बता सो चर गंजिया नहीं ली दे अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई सिंह है अब्दुल गफूर यम द टांक ना अम्मा खेलो ना दस रिश्मा प्रोडक्ट मिलावी इमरान कुंडी द लकीना डेरा मनाना सीमेंट फैक्ट्री दर पीजू अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई जीनत यमा मा सर ईमान होम दाता सो तसलाम दर कही वालेकुम सलाम ईमान अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई हसन यम द फजलेबाद ना इश्मा टूथ पाउडर सरप्राइज दे 200 रुपए के जमुंगा इश्मा हर्बल टूथ पाउडर दी द गाखुनो द खड़ पड़ रंग खत्म गाखुन खिस्तक द खुले बदबू खत्म और उरुना बदी विनम नाराजी और द शांति इश्मा हर्बल स्प्रे पर 250 था इश्मा क्रिक क्रीम पुंदो बांधे लगोले शे पो तलो बांधे द गुतो पसुको बांधे द गुतो द गुरतु नहीं द मंजू ना खराब हुई बदन दी पूखी जख्म राशि कमजे उस वजी सईदा या स्पूने दे या खर मशुमान डायपर पेम पर दवाजे पख दी दटोल इश्मा क्रिक क्रीम सर टिकी खुले के दन नम लगोले शे खुले दे पखदा उरई दे खुग दी इश्मा क्रिक क्रीम हर्बल प्रोडक्ट दे दा 300 रुपए में लावेगी इश्मा हर्बल आयल के 120 ml पर 500 दे और 200 ml 2500 दे इश्मा हर्बल आयल का वरकोटे बोतल ले का गटले दा तेल खुबत इसकी दा खोस्ता बीमारियां ठीक कई लसुन खोमला दर ठीक कई सईदा खो दा चिकम कागज डबे दे माने अखबल मोबाइल नंबर लिखे अखबल नामा बोली कई कम दुकानदार नामक से दागा नामा या कम इलाके से ताल्लुक दे आगा और जमा कई नो दी 20 तारीख पूरी जमुंग द मरदान रा टूली की 25 तारीख बाद मरदान ड्रावी कम खुशकिस्मत अब दगा यो टोकन यो कोपन रखी जी पकोरंदाजी मुकमल द उम्रे पैकेज दे ब्याह दिन आबाद नौशेरा भी ब्या इंशाल्लाह दगा शांति दा चार सदा दानोर इलाके और ब्या पिशावर और नंबर पर नंबर बांधे बडरागा निको नो फिलहाल दानोर चिकम इश्मा हर बलाइल इस्तेमाल हुई दुकानदारानो सरे जमा का वही खुदा मरदान वाला चिकम दी गना नो दा दुकानदारा नो रुनो तम जमा दरखास्त दे शापे सलम गिरजी राठोले ये नो दा मरदान वाला खुखा मखा जान सर इश्मा हर बलाइल डबे मपरे दे दुकानदार लेवर कवई और दुकानदार तू आए चरोरा तक कल ड्रा लजीनो दा जान सर ड्रा लरो योसा और याद सर शापे सल लवर का दे शापे सल नंबर दे आजान सर लग नोट कई जमुंग मरदान डिस्ट्रीब्यूटर दे 0316-88-77-808 द जुमे पोरस दमा जिगर देरो ना सलोर पोरे दागा प्रोग्राम ही न न मा सर मेलमा के दो खो बस मेलमा न शुरू लाज बांदे रात लो राना हुआ
Why Sangai Bhai Molana Wahidullah am the Barkaina Sangai Molana Wahidullah Sayyid Dinel Awasalam Alaikum Ikram Bhai Zama Dukande Nizam Bazar Standard School Ta Mahamakh Aw da Ishma Tamam Producer Asra Milavi Ki Nurdaraz Khan Aur Nizam Khan Suleiman Dabanuna Welcome Alaikum Suleiman Sirji Sangai Imtiaz Ahmadi am the Bajawad Patak Na Welcome Imtiaz Ahmad Adina lawa chikam de no Wai Habiba I am the Bajana the phone bilikam raghli vedera manana wa ista mor ta me salam wa alaikum salam sweet mamuta ta tola uridun ko ta me salam de wa alaikum salam bimar I am tola ta me darkhas de che dwara to ki Sara Khan the khuli mardan na lai se hadr ki khuri lai da dostar ko sata khan bhai aap ye bataye ke ishma me nakal bhi hai ya bilkul asar nahi karte asal cream ki pehchan kya hai acha asal cream jo hamari formula beauty cream hai na uski pehchan ye hai ki jab aap ishma formula beauty cream ki ye dabbi kholenge to yahan par 03423112252 mein ye number likha hua hai inaam ka usme aapko ikram likhta hua nazar aayega aur isme koi nakal nahi hai lekin phir bhi ehtiyatan maine aap logo ko bata diya aur aisi koi baat nahi hai karak mein bahut acche dukandar hain aur sabke sath ishma ke product available hain aur inshaallah aapko result milega jo bhi product aap istemal karenge inshaallah ishma ka aapko result milega ishma mein koi nakal nahi hai theek hai kal phir milenge inshaallah kal tak allah ne kehbaan aur mehruban ishma cosmetic zindabad pakistan paindabad dilwi allah paama

बच्चे वो तो वो फिर तो मेरी और आपकी एनिवर्सरी एक दिन होगी क्योंकि 25/4/2027 को मुझे भी तारीख के शो सुनते हुए 400 साल पर हो जाएगी तो मेरी और आपकी एनिवर्सरी स्पेशल मैट एंड ट्रांसमिशन होगी एक जगह देर से तो माना इंशाल्लाह फिर दस होगा क्या ना फरिश्ता फ्रॉम बनी तो सिक्किम देगा ना बर्थ डे वाला सिक्किम देगा ना 4 पाउंड वाला केक सिक्किम देगा ना दादा तू तरफ ना स्पेशल ट्रांसमिशन हो मेरी तरफ ना हो चला भी और पहले सिक्किम देगा ना सब शो चावे क्या ना।

खुश खबरी, खुश खबरी। हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश्की सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है। हुजीफा कंपनी शिफा तिल, पिशावर, बन्नू, लकी, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवी ददवा थोरो निशान वाला हुजीफा कंपनी शिफा तिल चिसड़ाए वक्तिनाए गंजाए नवी ओस ओस गंजे शवी भी याद सर वेस्तान गुरजीगी نو اغا سڑای چی سو رج شفا تل پا پل سر با نی مالش کی نو دادا بسر بو دوبارا نوی وشتان پیدا شی شفا تل وشتان غرزول بندوی وشتان گن او اجد کوی دی سر خارش خشکی پینا پخا هم ختم کوی زننا مردنا دوارو دپارا برابر پیدا من مزید معلوماتو دپارا پدی نمبرو رابطہ کولی شی سفر 331 397 36 36